इसका कौआ नखरे के माँ जो है खमो को बुंगा का के दी ट्वेन दख टेम कुछ हुआ के जुलाई ट्वेंटी सन सिस एन ट्वेन दख था सब जैसे का के राधु के माँ जो है खमो को बुंगा के इवे जैसे के कुमसेल मो लगे को कमंग आते जी के मेट कन को ना आते जी के कुइंग आते जी के गुल जुआ हम का तन चोंग बा वो लंग जी चाहूं को सा कवि से का को का के रातु ता को सिरे को मंटा खा के वो लंग नो तेम तो को आ मो का वो लंग को सा उजी से का के रातु को सिरे के मगरे को मैं कुमसेल मो लंग ता को सिरे वो लंग को ना ते का वो खसुन औरा आते उ के टिनिर टिनिर मन चोंग बा वो लंग को ना ते का वो क्राइम हे के सेफ्टी आते को दंग को ते का वो कम्युनिटी एके ड्रग औरा वो जी के का एम तो को उंगो लंग नो हन को सा को सिका को का के रादो के मा जो है खमो को बुंगा के इवि से के को मसंग वाला के को कमंग आदि जी के मेट कन को आदि जी के कोइंग आदि जी के गोले जो को हम ते जो को सा को से के ओसि नई के से मंगा को लंग मा वो जेट मोन स्टाइल ओ मॉडल आदि के छनो को सेवा टॉल वेरी